प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों ते नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है, इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, पूंडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

This is what we have done. ऐसी कीता है. स्वार्थ, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात का हाथ किसी ही पे सगले लर लर मुआ, बाद बाद विवाद, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे कहते लड़ लड़ के मर रहे हैं. इस चीज च ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इना चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी, प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने, ए तेतों हिसाब तेतों ए सवाल ए तेतों लेखा पुछया जाना है. कहंदे हन

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनु हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी तों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ जड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, सुते किसी का जोर नहीं है, यह दुर्लभ चीज है। दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साडे सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साडे पास कुछ भी नहीं है, इस तरह फील करते रहने। हालांकि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं नहीं मिलता जिसका वह साडे पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है, रब दी औरत है, रब दी पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नूं जे पिर तों वाहिगुरु तों दूर लै जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नूं गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नूं डोब दोगे, ये कुमला जाएगी। क्योंकि पिर तों दूर लै जाओ पत्नी नूं तो वह कुमला जाती, उदास हो जाती, वह मर जाएगी। इस शरीर नूं वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनु अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ, वो इसकी जिंद जान है, ये मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। ये रब दी कामणी है, इसनु रब दे नेड़े रखो, इसनु उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखिया सी, ये मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसे मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां, वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर दा सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है, कहिंदे ओ सारी दी

शरीर सरोवर भीतर है। शरीर सरोवर दे अंदर कल दे कीर्तन जैसे विचार ऐसी ना कि महाराज जी वो जड़ी वस्तु पानी है वो है किथे, वो किथे है? कहते हैं अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पहाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहते तेरे अंदर है। आज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर पीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल। कहंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्तमो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने होए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है। अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है, तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ कराएंगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है वो इस दे विच है, अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है, ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक पहुंचा ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे वो होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उस दे ढंग की हैं, उस दीयां विधियां की हैं, उस कमल नूं खिलाण दे वास्ते कि वो खिले उस दीयां की रिक्वायरमेंट्स हैं। यह कीर्तन आन वाले दिनां दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नूं असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नूं जान सकीए, ते शरीर दे अंदर जो है उसनूं जान जाइए, ते उसका रस्ता समझ लईए पे उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफल हो जाए। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नूं समझ लईए और शरीर नूं समझण तो बाद इस नूं सानू साधना पैना है, इस नूं सानू फिर पढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नूं साधना पैना है, इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है। वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नूं समझ लवांगे, इस नूं साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर दे अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचण दा रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नूं एक्सप्लोर कर लवांगे, अते जो अंदर साडे वस्तु नूं पाउण नूं महाराज ने कहा है उसनूं असीं पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नू गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के।

अगर कोई सोच आ जाता, अगर कोई सोचन आता, मतलब पाप भर गए, किस तरह भेजना, किस तरह खत्म करना, वाहेगुरु के नाम हर बारी जो एक सोच आ जाता वाहेगुरु के नाम भेजो रब तुहाडे कोल नहीं रहेगा। है वाहेगुरु का मतलब कारण यही है, असीं तां ही वरतदे हां कि असीं खालसा बन जाए, खालस दे विच रहे।

मन का इशनान भी करना पड़ेगा। और गुरु जी ने हुक्म दिता है, गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए सो भल के उत हर नाम ध्यावे, वो किस तरह

आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु का

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निर्भरता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

बहुत प्राचीन मधुर अते प्रमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वाद्य स्वर धैवत अते संवादी ऋषभ है। इसकी आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ फुटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। भैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मिर्ग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द का गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his life within them. Jaisa likht likhya tur karta hai, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaav kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe anth liptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat Kareem, Harke Gun Gama, Nanak Das Tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo, deen ke date, mera gun avgun na vichar.

छोटा जा बच्चा, और भी दोरी दस्तार सजाई हुई दोरी, जो मां अपने बच्चे नूं गोद च बिठा के जपजी साहब का पाठ सुनावे ना, गोद च लै के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बच्चे नूं सुनावे ना, वो बच्चा डोलूगा नहीं, सब आखो सकना, बच्चे का कोई कसूर नहीं। मत कोई समझे साढ़े बच्चे बिगड़ गए, साढ़े बच्चे बिगड़ गए, सारे बिगड़ गए जी, गाने वाले असी हैं, असी ध्यान नहीं दे, जमदे बच्चे गोद च लैके पुरानियां मातावां करदियां होंदियां सी, सब आखो सर नाले चक्की पीड़ी नाले सुख नहीं पानी, ते गोद च बच्चा होना, उस चक्की नहीं रही, बच्चा गोद च है, मां चरखा करती है पाठ कर रही, बल्कि पिताजी पासों ऐसा वचन भी सुनिया, इतिहास भी जिक्र आता, जदों बीबी लंगर तैयार करती है ना, उदों जपजी साहब का पाठ करती, मूल मंत्र का पाठ करती, जेड़ा लंगर पाठ करदिया तैयार किया जाए तो वह अमृत बन जाता, जेड़ा खाऊगा वह भी असर होगा, तो जे फिल्मी गाने लाए हुए कि कोई अदर टेलीविजन वेख्या जा रहा है नाले प्रसाद तैयार हो गया, वो ही असर होना, बच्चे ने जो मर्जी बना लो, चाहे भक्त बना लो, दादा बना लो, एवं तो नहीं क्या जननी जने ता भगत ही जान, कह दाता कह सूर, ये नहीं नहीं तो जाननी बाजर ना ही बैम, बच्चे वाल जिस मां बाप ने पूरा ध्यान नहीं दिता वो अपने फर्ज तो गाफ के, सब आखो सतनाम श्री वाह, फिर आखो सतनाम श्री वाह, अज तो शुरू कर दो, जे करते ने तन पा अमृत वेले उठ के, जिन्ना टाइम है, ड्यूटियां बहुत सख्त ने इधर अमरीका में, बहुत सख्त ड्यूटियां ने, समय सिर जाना पैंदा, जिन्ना टाइम मिले जो मिले सवेर वेले मिलता शाम नूं मिलता जो भी मिले बच्चे नूं गोद च लैके सिमरन करो, जब हिसाब दा पाठ सुनो असर हो कन्ना च पो वो गल हिरदे जाऊगी, एक पास पत्थर है उन्होंने लोहा छुआ दो तो सोना बन जाता, ये नाम हिरदे में वस जावे तो फिर भाई मनी सिंह ही बनूंगा, सब आखो सतनाम, फिर भाई तारू सिंह ही बनूंगा, हिरदे च वस गया, हूं ये बच्चा छोटा जहा घर च वातावरण ऐसा सी, दोहरी पग बनी हुई छोटा जहा बच्चा छे सत साल का, पिछौर तो आई संगत आनंदपुर साहब नमस्कार की, बड़ा खूबसूरत बच्चा, ते महाराज बौज में ही पुछन लगे वो काका तेरा नाम की है, कहते जी डोगा डोगा, महाराज अपनी मौज में ही बरास में सन कह लगे ये कि डोगा ते पूर्वला कर्म प्रगटिया, पूर्वला कर्म प्रगटिया, कई बार बच्चे तुम ध्यान ना वेखो छोटे बच्चे ऐसी गल कर जाते ने सियाणा सोची पैदा गल की कीती, चार पांच साल दे तीन चार साल बच्चे दे कई ऐसे बच्चे ने ऐसी गल करते ने सियाणा सोची पैदा गल की कीती टिकाने की गल की, महाराज कह लगे किदे जोगा, पहले पूछा तेरा नाम की जोगा, ते सारे गुरु कहन लगे किदे जोगा,